करता साईं करता है से सो सेवा सेवा करे जिस लोग कमलाए से हो कमले हो दरवाजा से सो का मन पाए से बस मन पाए सो करे मन चंदे आ सो कम पाए से आ दर गए पैदा तेरे से का दर गए पैदा जा

वॾो वॾा वॾ में सिर सिर कंधे लाहींदा नदी जे करे सुताना कह पिराईंदा दर मंगन पिटना पाईंदा दर मंगन पिटना पाईंदा।

त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बण तृण कहत तव सर्व नाम कथै कवन कर्म नाम बरनत सुमत। जब लो नहीं पाग दिलार उदय तब लो भ्रम ते फिर ते बोतायो कल कोर समुद्र में बूढ़त थे कबू मिटे नहीं रे पछताय तत् विचार यह मथुरा जगतारन को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो हम अवगुण परे एक गुण नाहीं।

पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनयो गुरु संगत

कीरत की गुरु राम दास राखो शरणाई सो कहो टल गुर सेविए अहनस सहज सुवाए दर्शन परसय गुरु के जन्म मरण दुख जाए दर्शन परसे गुरु कै

पाथर ले पूज हैं मुगद गवार ओह जा आप पूरा विसाह पाथर ले पूज मुगद गवार ओह जा आप डुबे तुम कहाँ तरण हार पौड़ी

हार अगम अगाहो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इको ओंकार सतनाम करता पुरुष

निको ठाकुर दिशा बेसुमार अथा अगणत अतोले ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै।

रहे शरणो ही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार। सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर, अकाल मूरत आजूनी सैभं गुरप्रसाद। एक ओंकार। सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर, अकाल मूरत आजूनी सैभं गुरप्रसाद। एक ओंकार।

गुरप्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत

ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗਮੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਾਓ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਸੱਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੁਦਵਣ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦਹੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰ ਨਹਾਰਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਊਂ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸੱਚਾ ਨਾਓ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ ਉਤ ਭੁੱਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀਹੈਂ ਦੁੱਖ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਉ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਭੋਗ ਗੁਣ ਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ ਜੇ ਵੜੇ ਆਪ ਤੇ ਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜਿਹਨਾਂ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੀ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਇਸ ਨਾਥ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵੱਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਿੰਹ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀ ਵਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿੰਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਖਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਾਨ ਚਿਤਵਹੇ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬੈਂਤਾ ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ ਸਿਰਸੇ ਰਿਜਕ ਸਮਾਹੀ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ ਊੜੇ ਊੜਿਆ ਵੈ ਸੈਂ ਕੋਸਾ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਸ਼ਰਿਆ ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੇ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੇ ਮਨ ਮਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਤਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਏ
तेरा अंत ना परव्रया। राग आसा महला चौथा सो पुरख इक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख नरंजन हर पुरख नरंजन हर गम्मा गम्मा पारा। सब ते आवहें सब ते आवहें तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी तू जीहां का दातारा। हर ते आव हो संतो जी सब दुख विसार नहारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा। एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाणा। जो सेव हैं जो सेव हैं तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा। हर ते आवहें हर ते आवहें तुद जी से जन जुग में सुखवासी। से मुक्त भए जैना हर ते आया जी तिन टूटी जमकी फांसी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ ते आया जी तिनका पौ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत पंडार जी परे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर निके अनेक अनंता। तेरी अनेक करें हर पूजा जी तप तापहें जपहें बयंता। तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमरत शास्त्र जी। कर किरिया खटकर्म करंता से भगत भले जन नानक जी। जो पावें मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी। तुद जे वड़े अबर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी। तू नहीं चल करता सोई तुद आपे पावे सोई वरत जी। तू आपे करहें सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी। तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी। जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई। जो तो पावे सोई थीसी जो तू दहें सोई हो पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी ते आया जिसनों कृपा करें तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुगवाया तुद आप विछोड़या आप मिलाया। तू दरिया वो सब तुझी माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल वियोग मिल विछोड़या संजोगी मेल। जिसनों तू जाना है सोई जन जाने। हर गुण सद ही आख बखाने जिन हर सेवया तिन सुख पाया। सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए। तुद बिन दूजा अवर ना कोए तू कर कर वेखे जाने हैं सोए। जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरड़े भैरे निवासा।
पाणी पावक तिन्ह किया। पंकजों महो पग नहीं चले, हम देखा तहन डूबियले। मान एक न चेतस मूड मना, हर बिसर तेरे गुण गलिया। रहाओ नाहो जति सती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म पया। प्रणवंत नानक तिन की शरणा, जैन तू नाही विसरया। आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया। गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा किते ना काम। मिल साध संगत भाजे केवल नाम। स्रंग जाम लाग पब जुल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग भाया कै। रहाओ जब तब संजम धर्म ना कुमया, सेवा साध न जन्या हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण बरे की रखो हो शर्मा। इक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाह पाई, अमरी करो हाथ दै रक्षा। पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरण मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम काबो हो। आप हाथ दे मोहे बचाबो हो, सुखी बसे मोरो परवारा। सेवक सिख सबै करता रहा, मोर अच्छा निज कर दे करिए। सबैरन को आज संगरिए, पूर्ण होए हमारी आसा। तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना थ्याऊं। जो बर चहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है। चुन चुन शतर हमारे मारी है, आप हाथ द मुझे उबरी है। मरण काल का त्रास निवरी है, हो जो सदा हमारे पच्छा। श्री अस्तु जो करिहो रक्षा, राख ले ओ मोह रखण हारे। साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बन दुष्टन के हंता। तुम हो पुरी चतर दस कंता, काल पाए ब्रह्मा बपथरा। काल पाए शिव जो अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा। सकल काल का किया तमाशा, जौन काल जोगी शिव कियो। वेद राज ब्रह्मा जू थियो, जौन काल सब लोक सवारा। नमस्कार है तहें हमारा, जौन काल सब जगत बनायो। देव दैंत जक्षण उपजायो, आदि अंत एक अवतारा। सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी। सकल प्रजा जिन आप सवारी, शिव कन को शिव गुण सुख दियो। शत्रण को पलमो भद कियो, घट घड़ के अंतर की जानत। पले बुरे की पीर पछाणत, चिंटी ते कुंचर असथूला। सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी। सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछन्ने। कड़ कड़ के बड़ बड़ की जन्ने, जब उद करख करा कर तारा। प्रजा तरत तब देह अपारा, जब आ करख कर तुह कबहूँ। तुम मैं मिल तुंदे धर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे। आप अपनी बोझ उचारे, तुम सब ही ते रहित नरलम। जानत वेद भेद अर अलम,
ड्रंकार निर्विकार निर्लंब आदि अनिल अनाद संब तका मूड़े उच्चारत पिदा जाको पीवन पावत बिदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव ड्रंकार का चीनत नह बिव आप आपनी बुध है जेती बरनत बिन्न बिन्न तो है तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कहीं पूपा अंड जे रज से तज कीनी उत्पुज खान बहर रच दीनी कहो फूल राजा हवे बैठा कहो सिमट भयो शंकर अकैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आजोगा स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखे उबारे असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच्छ करो रणगाता जे आस्तव शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तहाय मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो काल को इक बार ते है ताकि काल निकट न है रक्षा हुए ताहे सब कल्ला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कल्ला कृपा दृष्ट तन जहे न हरे हो ताकि ताप तन कमे हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह शवै सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें सुबारा काल फांसते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दर्द दुष्ट दुख तेरा खड़ग गे तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो बारी सर्व ढोर मो हो सहाई दुष्ट दुख ते ले हो बचाई सवैया पाए गहे जाते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्य सिमरत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो सिर अस पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तुहे बखन्यो दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ गए गए हो तोहारो द्वार बही गह की लाज अस गोविंदास तुहार रामकली महला तीजा आनंद एक ओ ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता वाया सह सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आइया शब्दो तंगाबो हरि केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब मिसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गलना सम्रत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा
क्या नाही घर तेरे घर दा दे रह सब किच है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे सच्चा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जिन भुखां सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दिया एह वडियाइया कहे नानक सुनो संतो हो शब्द तरो पेहारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सभागे कर सभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया दुर कर्म पाया तुद जिन कौ से राम हर के लागे कहे नानक तै सुख होआ तिद कर अनहद बाजे आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पाए सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा भर भूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहा भर भूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे मुंदावनी महला पंजवा थल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नहीं जाई नित नित रख उर धारो तम संसार चरण लग तरी सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पायोई तरस पाया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरेया तरस पाया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरेया वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद न सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण।

दोहराऊं आज्ञा पैया काल की, सब सिखन को हुक्म है, गुरु ग्रंथ जी मान्यो, जो प्रभु को मिल बोच है, राज करेगा खालसा, खुआर होए सा मिलेंगे, खुआर होए सा मिलेंगे, बोले सोनिहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

चार वेद अर सिमृत प्रन्ना कमलापते कबला नहीं जन्ना कह कबीर सो पर में नाही पग लग राम रहे शरणाई चार वेद अर सिमृत प्रन्ना कमलावत कबला नहीं जन्ना कह कबीर सो पर में नाही पग लग राम रहे शरणही वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

सुमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए जिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सुमरै कर नौ निदावे ताए सब थाई हुए सहाय दसवा पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाह।

काल की सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी मानियो जो प्रभु को मिलवोच है। राज करेगा खालसा खुआर हुए सा मिलेंगे, खुआर हुए सा मिलेंगे। बोले सोनेहा वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

तोरी मीठे तेरे बोल द्वारका नगरी काहे के मगोल। कबीर सात समंद मस करो कलम करो बन राए बसुदा कागद जा करो। हर जस लिखन न जाए सो कटल गुर से भी एहनस सहज सुपाए दर्शन पर से गुरु कह जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। राग तनासरी बानी भक्त कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सनक सनंद महेश समाना शेख नाग तेर मर्म न जाना। सनक सनंद महेश समाना शेख नाग तेर मर्म न जाना।

कह कबीर सो पर मैं नहीं पग लग राम रह सरनाही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम।

क्रोधन गर्व फ्रया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखे लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर जंडौत पुन वड्डा हे रहाओ साकत हर साधन जाने आतन अंतर हो मैं कंडा हे ज्यो ज्यो चले चुबै दुख पावे जमकाल सह सरजंडा हे हर जन हर हर नाम समाने दुख जन मन पव खंडा हे अविनाशी पुरुख पाया परमेश्वर वा सोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ वड्डा हे जन नानक नाम धा टेक नामे ही सुख मंडा हे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो विनंती सुनो मेरे मीता संत चल की बेला इहा खा चलो हरला हागे वसन सुहेला आउद घटे दिन सर नारी मन गुर मिल का सवारी रहा संसार विकार संसे मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिस है जगाए पियावे हुरासा का तकता तिन जानी जाको आई सोई बिहार जर गुरते मन मसेरा।

बडानन जाने कौन तेरो पेओ अलख अपार दियो अकल कला है प्रभ सर्ब को तानं जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाना हाँ कै बल बल

क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाए हर नाम उचारी स्नान दान तापन सुच किरिया चरण कम

अरे भलिहारी गुरु अपने विट हो जिन कार्य सब सवारे। वाहिगुरु जी का खालसा।